आया हीरो को बच्चा आया हो यारों का मयार दुश्मनों का दुश्मन मत धना धन।

पिक्चर देख सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं, किस्मत ने घुमाया होटल में पहुंचाया हूं यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन देखना धनी।